तद्मादियेन प्रेमेर मन्मा दहि चोरे माखन चोरे चोरे चोरी साड़ी धर्मानन्त पाप चोरे

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

शंख कपाली भूषित करौ मालास्ति माला धरौ दिद्यौ द्वारवती श्मशान निले दिहनौ नागारी गो बाहनौ दीकृत्यौ बलिदक्ष मतनौ मेघाद्रि राजा प्रभौ पापम मे हरतौ सदा हरिहरौ श्री शैलजा वल्लभौ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात् पारम

0: Media, Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: बीमा को लाभ दी आपनों कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: यो रेडियो सैलुंग को समय सूचक हो
2: यति बेला मध्याह्न को 12 बजेको छ।

नमस्कार रेडियो शैलम सामुदायिक एफएम बैंडमा थपलो 7 MHz म पत्र प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्बत 2083 अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन् 2026 मे 23 तारिक ज्येष्ठ 9 गते शनिबार सप्तमी तिथि अब स्तुति गरौं।

कल्मिकपना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजा भौतिक जगत में नहर्दा नारीले प्रगति पथको।